0: 92.7 Hot FM का गया दौर शरी 93.7 Hot FM बुकी नॉन टाइम राइट नाउ हे वी गेट 829
1: Hot FM
0: वी जस्ट कैस्ट द क्लीफ फिशर इन फ्लो जी कमिंग थ्रू दिस नेक्स्ट सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय बर्ड 345 ट्विन पैक पंगदलवंग बासो 2 टाइम्स ना इनोम 2 टाइम्स ना न्यूट्रिशन 7 पेसोस एंड 75 सेंटावस लांग एसआरपी पर बासो बिली ना